डॉक्टर, मैले उसको ओइल पावर जोगाउन धेरै ट्राई गरिसकेँ, म हार खाइसकेँ। आई एम सो सरी डॉक्टर।

यही काफी है, हर एक मौसम भी अपना लगे। तेरे इश्क में ये दिल कहे, अब और कुछ भी ना चाहिए।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064 20 670, मोबाइल नम्बर 98 460 56 200 38।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-6670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।